उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो उजाला रेडियो.

की रो रहा हूं मैं। या मोय अंकित तिवारी, अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म आशिकी 2 की सुन रहा है तू, सुन रहा है ना तू कि रो रहा हूं मैं। सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जुबिन नौतियाल की आवाज में अब गीत पेश है, सुनिए।

एंड तुझे कितना चाहे और हम, जुबिन नौटियाल की आवाज, फिल्म कबीर सिंह का गीत, और उजाला रेडियो, और हम और आप।

Nash King and Shasha तिरुपति से हाँ गीत को आप सुने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड एंड अरिजीत सिंह

Juwaro Jala Radio के जरिए प्रोग्राम में हम एक नहमा आपको सुनाने को जा रहे हैं. या वचिन्नत होर्ड वस्त स्टुक्य फन बिली जीन फॉर माइकल जैक्सन. मैं दत गाई नीट वोलेदिग द्राएं. मैं दित नुमर गाई वेल द्राएं फन मुकासीन फन एक्सप्रेस, म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस. वै हैबे आनस्टांदे 29 en 30 augustus in Den Haag in GIA Event Center. Ujala's Braza Mila Fest. Braza Fest in Den Haag in GIA Event Center. Koop je super early birds tickets vanaf €8,50. Slechts €8,50. Doe je liever? Ga naar onze website brazafest.nl. Mukasin is er ook bij op 29 en 30 augustus in GIA Event Center Express. Mukasin, een van mijn favoriete zangers. Ik heb Ganon John Hega, Ijese Gawe Hega. Ach. Ik heb Gawe Hega. Het is nou moeilijk is doen het.

रशिका दीनदयाल एंड जितना पुआ हैगा और वी ओक लावा खात भूजे सभी के खातिर हमने ये गाना पेश किया है पूरी रेंज आशे बिनु कोट तो लावा जे भूजे के तोर खातिर हैगा रशिका दीनदयाल दिस इज द रानी रशिका दीनदयाल हम लोग के हिंदुस्तानी के रीत और रिवाज कितना मोह है ना ऑंसो रिटिवेल कितना मोह हैगा हम कन्हिया देखत रही हम भी कन्हिया रह ली एगो भतवान में रह ली सीख दे मंकरी हम भी ब्याह कर ली हमारे ब्याह ना पहले ज्यादा कान है

झिम घिरे सावन, वाह। और उजाला रेडियो यहीं सुनवा लो, और उजाला रेडियो के जरिए अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं यहाँ से। जाते जाते वक्त मैं आपसे बता दूँ, फॉलोइंग वीक वनाफ मंडे टू मेट फ्राइडे, एंड आल्सो टाइट हैव देन हैव वी कॉफी चाय मिडा शो, आल्सो टाइट हैव हम लोग रोज ना बनाए से ग्लैमर वेल जब टाइट रेट हम लोग वेल बनाए, दिस मूड ऑलटाइम अफस्टम सेन ऑफ उजाला रेडियो। En volgende week, dan ga ik, en dat beloof ik ook, dan ga ik dit onderwerp wel bespreken met Anand Chandrika Singh. Jikker staat hem in je programma Benaila. We gaan het wel hebben over food noise. Hè? Letterlijk, voedselruis. Wat is het? Hoe ontstaat food noise, voedselruis? Is het normaal? Kan het minder worden? Daar gaan we het wel over hebben. Want Hamloke Manua Junhena, Hamloke Man Junhega, die laat ons soms dingen doen. Maar dan ligt het aan jou natuurlijk of je wel naar die man, hè, naar dat stemmetje gaat luisteren. Hamloke Manua Vibolega Dinber, ik ga er ook halen, iemand kan kijken, iemand kan kijken. Ja, je moet wel sterk in je schoenen staan hoor. Voor de mensen die willen weten waar Brasa Fest is, aanstaande 29 en 30 augustus, check onze website brasafest.nl. Amtelijke Batadi, dat is in Den Haag, 29 en 30 augustus.

0: Hallo, yeah. Aardje Sintjes, zaterdag 4 juli. Maak er een mooie dag van, een mooi weekend van. Let goed op jezelf. Let goed op je dierbaren. Mooi zeg je. En Hamavse 4 mil nu alleen aan willen doen mee. Op Ujjala Radio. Aar is gana ke saad Hamavse is aze chate hai. Raj Ganesh ke waaz mein hama ko nahma sunan ko ja rahe. Hij heeft het heel mooi gezongen. To isi gana ke saad Hamavse is aze chate hai. Raj Ganesh program mein aa rahe. कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा दोस्त तू कौन से प्यार करे हैं कौन से मोहब्बत है क्या ये बहन में तीमंत खतरा हो तो तू ना खानी बोली कि हम तो खिचा ही ना ये मैं तो शहफा हूं हम तो साथ हमेशा रहते तू बहुत विशाल बाटे तू बहुत मोई बाटे
1: जन्म जन्म का साथ है
0: और तोर बिना हम ना रही से ये सब चीजों में बोलिए
1: तुम्हारा हमारा
0: मोई से रहिए

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनवालो और उजाला रेडियो की तरफ से ये खबर है कि सुजल उमराव भी रहेगा ऑफ ब्रासा फेस्ट ऑफ 29 एन 30 अगस्त। सुजल उमराव भी रहेगा सुनवालो एंड दैट इज दान ऑफ 29 एन 30 अगस्त इन Den Haag GIA Event Center. Brasafest.nl website.

है बीनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बीनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

और लग्न किसी नु जावे गुरु नालो इश्क मीठा हाय हाय या द सेम फॉर्म यो यो हनी सिंह वास दैट नेट सो ऑन द वोकल्स. Ja, tot zover de reclamebreak hier bij Ujala Radio. En je luistert naar Ujala Radio, Robby Amit J. Ramkesaat.

या हिल का लवली गाना, जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे ये क्या हुआ। या निका तुहरी, ओ गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल लव गाना, हियर बाय दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो, और वो भी अमित जयराम के साथ, द हिलक्स गाना एंड द बेस्ट हिट्स।

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, hello. 24/7.
3: Ujala. Ujala. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहीद गुलजार। यह है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम और मेरे जुड़े संगीत के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। और सबसे पहला सिलेक्शन हो जाए सुरों का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ यह लगता है कि तेरी महफिल है। हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से।

0: सुरों का बादशाह, संगीत का फरिश्ता, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ के तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है कि तेरी महफिल है। आप तो ऐसे ना थे, नहीं नहीं आप नहीं, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। इट्स यू आर।
1: दोस्तों, पूछने वालों की भी आदत अजीब अजीब होती है। मेरी शादी थी, मैं घोड़ी पे बैठा हुआ था, एक आदमी आके पूछा,
2: और भाई घोड़ी पे बैठे हो?
1: मैं बोला नहीं, गधे पे बैठा हूँ। अबे जब देख रहे तो पूछना जरूरी है। मेरी बीवी मायके गई थी, मैं बर्तन धो रहा था, एक ने आके पूछा,
2: और भाई बर्तन धो रहे हो?
1: मैं बोला नहीं, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अबे जब देखता तो पूछना जरूरी।
0: बीच बीच में थोड़ा सा मजाक हम आपसे करते हैं। आइए प्रोग्राम को जारी करते हैं और ऐसे में हो जाए एक और सिलेक्शन। फोन का नंबर आप नोट कर लेना, एम्सलेम 020 409 0807।

0: Jalla Radio, Radio. Doe Janne heet, toch? Toch? Toch?
1: मोहम्मद इरफान और विपिन की आवाज, फिल्म का नाम लाली की शादी में लड्डू दीवाने, क्या नाम है, लाली की शादी में लड्डू दीवाना ऐसा होना चाहिए। मोहम्मद इरफान और विपिन की आवाज़।

फिल्म का नाम लाली की शादी में लड्डू दीवाना, मोहम्मद इरफान और विपिन की आवाज, और स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो, तू जाने है तो।

0: एक बार हमारे जगदीप साहब एक लड़की के पीछे पड़ गए और कहने लगे,
1: अरे खे, अरे जाने मन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अरे जब जब तुमको देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है, है, है खम भाव घर के, अरे जाने मन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ खम भाव घर के।
2: लड़की कहती है, मेरे पीछे मत आओ, तेरे पीछे मेरी मारी है।
0: जगदीप साहब फिर शुरू हो जाते,
1: अरे जा जा जा जा जाने मन, अरे क्या करूं कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, है तुमको देख देख के हम रहते हैं परेशान, ये हम तुम्हें बता नहीं सकते, हाय हाय क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है।
2: लड़की कहती है, मेरे पीछे मत आ, तेरे पीछे मेरी मारी।
0: जगदीश साहब कहते हैं,
1: घबराने की कोई बात नहीं है, तेरे माँ के पीछे मेरा बाप आ रहा है।
3: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are. You are. You are.
4: The most sensational and
5: the best. The best.
6: आप प्रोग्राम में सुनिए कि हे मैंने कसम ली, हम भी ले ली सब कुछ।

हे मैंने कसम ली, क्या तूने भी कसम ली? नहीं होंगे जुदा। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज आप सिलेक्शन अभी सुने हैं। स्टेशन है उजाला रेडियो यूआर, फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन का 020 एम्स्टरडम 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते।

जुआर का प्रोग्राम में आपने बॉम्बे वाइकिंग्स से अभी सिलेक्शन सुने हैं। तेरे ख्यालों के साए दिल में कुछ ऐसे समाए, एक एहसास है तू मेरे पास है, फिर भी ना जाने क्यों ये मन उदास है।

मजा आ रहा है ना, मुझे भी। ये दिल लीजिए, सिलेक्शन आप सभी सुनने वालों के वास्ते अर्ज है यूआर की पूरी टीम की ओर से।

ये दिल हाय ये मेरा दिल, कोई किसी को क्यों चाहे, अपनी जिंदगी मिलाए, उसे अपना बनाए, क्यों उसे इतना चाहे ये दिल। सिलेक्शन पेश की गई है उजाला रेडियो की पूरी टीम की ओर से आप सभी श्रोताओं के वास्ते। मिले जुले संगीत में हम आपको अब लकी अली की आवाज में एक सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम। हम आपकी खिदमत में कुछ ही देर और स्टूडियो में हाजिर है। हमारे बाद में और कौन कौन आपकी खिदमत और सेवा करने वाले हैं, आप प्रोग्राम को बेशक सुनते रहना और सुनते ही जाना। द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है। स्टे ट्यून्ड।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

7:12 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। नई महीना जुलाई है मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस नए महीना का पहला शनिवार है फिर जुली 4 जुलाई, वो भी साल 2026। आज मौका मिला है आपका सेवा करने का, तो हम दौड़े दौड़े चले आए स्टूडियो में। 5 घंटे लगातार तेरा और मेरा साथ रहेगा आज रात्रि, क्योंकि 12 बजे तक पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड RIQR के स्टूडियो रतनम से। आज 4 जुलाई है मेरे प्यारे सुनने वालों, और एक बैन हिल हमारे एंथुसियास्ट, मुझे मालूम है आज फुटबॉल है। और बहुत सारे लोग फुटबॉल ताकेंगे और इस वक्त देख रहे होंगे कनाडा मारोको एंड मारोको स्पील्ट नटूलक बहुत स्टेरिक एंड जीतने का चांस भी बहुत है। और रात्रि में 11 बजे जहां तक मेरा ख्याल है तो एक और खेल होगा पाराग्वाई फ्रांकराइक, फ्रांकराइक इस फेवरेट, तो लोग यही सोचते हैं कि फ्रांकराइक जीतेगा, मार ये भी तो ताला माल नोइट दालक विन कनाडा फन मारोको के जाने हैं ऑफ पाराग्वाई फन फ्रांकराइक, तू जाने तो सब कुछ हो सकता है। जो देख रहे हैं फुटबॉल एंजॉय, ये कानून फुटबॉल का एक मेथ खलाइट आइट एंड उजाला रेडियो फुल ऑन, दैट इज अ टिप। मेरे प्यारे सुनने वालों, और बातचीत करने से पहले आप सभी को हम तहदिल से स्वागत करते हैं। बेहद खुशी है हम कि जो लोग चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर साथ दे रहे हैं, और नहीं तो क्या मैं अपने पूरे दिल की गहराइयों से आप सभी को तहदिल से धन्यवाद कहते हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। Ja, ik ga geen voetbal kijken, want ik heb hier in mijn studio geen voetbal, hoe noem je dat, tv. En dat gebeurt wel vaker. Programma, banante, wakte, moet ik keuzes maken. Aapka sewa karna. Ja, kuch or karna. Tu jane toch. Aur tera aur mera saath khub jam rahe hai, saalon se. To hamesha, probeer ik altijd voor jullie te kiezen. Tu jane toch. Itna pyaar karte hai tumse. तो मेरे प्यारे से नौलो, आपको तो मालूम है फॉर्मूला ये प्रोग्राम का, और वैसे भी रहेंगे आज भी कि जो लोग स्टूडियो में व्हाट्सएप करेंगे अब 020-363-0000 उन सभी के नाम से 8 बजे के इश्तिहारों के बाद हम नगमाएं चलाएंगे आपके नाम से। खींची तो जोर खीफा, आप बता सकते हैं कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या अनुष्ठ नंबर, तत्म खीवल से। Dus je mag vanaf nu al gaan appen. En lagataar aap app kan zeggen tegen Jabi. Maar ik heb zin om te appen en appen. Doe dat net toch. 020-363-0808. Aapka shub naam. Chahe aap 100 keer app kare. Zet je naam erbij alstublieft. Aur aapka hase app karte hai. Thik hai? Aur mere pyare se nolo lagi aapke kamukaj ke liye. Aapke farmaishi zaruri khabre. Maut ke khabre. Jankari, jo bhi information aap praap karna chahoge. Dan moet je schakelen met kantoor. Van maandag tot en met zaterdag, zomaar is januari. S'morgens vanaf 10 uur tot in de middag 3 uur. Subah met 10 budget, sham met 10 budget. Orovi Tarka number 020-409-0807. 020-409-0807 per. Maar natuurlijk kan je ook mailen. Aajkal ke bel kare. व्हाट्सएप के जो का नाम है स्टेटस पे लिखल है नीत बेल का नीत प्रात अलेन अलेन बरिख्त आदमी ना मांगे बतियाए आदमी से, और हमें गौरमी बाती हम बहुत बतियाएला मार नतुलक का ये मेल उजाला रेडियो को आपके हरे कामों काज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते 24 घंटे 7 दिन लगातार info@ujala.nl info@ujala.nl। और मेरे प्यारे से नो चेक ऑन से सोशल्स हैं
टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और नतुलक यूट्यूब, किसी भी तरह जोड़ जाइए उजाला रेडियो के साथ। दन काया आलस मी पक वत वे दार अलमाल पोस्टर तू जाने तो पोयो पोयो एक है परसेने। आज हम का खेली तो से बता दे, ब्रयन बोने मैट के एक में और गरम भात और हाँ कौनसी है वो चीज वक नाम दे भैया स्नेह बोना। हाँ स्नेह बोना पोय बहुत स्वादिष्ट लगल हमें और खास करके चटनी रहा का नाम है छौकल आम के। अरे तो मेरे प्यारे से नौलो लगातार आपके सेवा हम करेंगे 12 बजे रात्रि तक और आपके व्हाट्सएप के इंतजार में हूँ। जिस तरह से ऐप आएंगे ऑन थाउ डॉट खुद मेरे प्यारे से नौलो हरदम लोग पूछते हैं वन एयर कॉमेन लीचे, देरी से ऐप करेंगे और पूछेंगे वन एयर कॉमेन लीचे, देरी से आप ऐप करेंगे तो देरी से भी आपका गाना हम चला पाएंगे। मोहलक ये मुझसे रेखना की फॉर सेफ मैंस पर उर गाने का लीचे दराये उससे शायद एक कम या शायद एक ज्यादा। Dus je bent al heel gauw in het volgende blok toe, Janet, toch? Als je opening selection ke oor, mere pyare sinne walo, Indro Neil and Mr. Black, here on you are. Enjoy your Saturday, mere pyare sinne walo. Bharpoor aap enjoy kare apna weekend. Mausam to ekdam chakachak hai. Aur aapka station on fire.

या इंद्र न्यू रॉय एंड मिस्टर ब्लैक, मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन आप तक हमने नशर की है, पेश की है। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइफ एंड डाटा की वार के स्टूडियो रोहतक नाम से सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे और आप सभी प्रिय सुनने वालों को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप अर्ज हैं शुभ वीकेंड, नहेल मोई वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों। मौसम तो एकदम छकाचस है, प्रख्त खबीर। आज भी सुबह को दोपहर को बहुत सारी चीज किए हैं बाहर एन नतुल कतवास प्रख्त खबीर। और मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों भी मौसम अच्छे रहेंगे, तो आप भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों। कौन जाने कब फिर मौसम का हालात बदल जाए। 020-3639-00 जहां पर आपको ऐप करना है, कुछ लोगों ने ऐप किए हैं, उन सभी के लिए 8 बजे के बाद हम गीत चलाएंगे जरूर। आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, डन मुझे ऐप बनाना स्टूडियो 020-3639-00 और रहे दफ्तर के कार्रवाई जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आपके कामकाज के लिए बेल दान नीट ऑफ एप नीट ना द स्टूडियो मार बेल मेट कंतोर टेनिस कंतोर उर ऑफ द कंतोर दाग 020-409-0807। या तो दान मागते नी आउट वानीर 24 घंटे 7 दिन लगातार का योग मेल नार info@ujala.nl। उमर वागी तुसैन द किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों, और कविता पेश करता हूं ये नगमा हीर ऑन यू आर।

महेंद्र, मेरे प्यारे जन वालों, महेंद्र बी एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। मेरे प्यारे सुनो, 4 मिनट गुजर चुके हैं सरे 7:00। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। सैटरडे नाइट फीवर विद रतन, द ब्यूटीफुल लोकल्स, फिल्मी गाने ज्यादा से ज्यादा जो फिर से सजाया गया है, गाया गया है, हमेशा सेवा में पेश किया करते हैं। अनुसूचित मैं पुराने नगमाएं पेश कर रहा हूँ इस पहले घंटे में। निकला लेकिन और भी है गाने जो इस साल का हमने अभी तक आपको सुनाए नहीं। मार एक दो शायद, वो बाद में जरूर से जरूर आपको हम सुनाएंगे। वारोंदर ओक इंच प्रख्त खरी मिक्स फन दही रबरोडस। हमारे रनिया प्रख्त खरी मिक्स तोड़ दीजिए जुस्ताना, वो बाद में हम चलाएंगे आप सभी के लिए। और लगातार आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 020-363-0000। और दिस इज डेनिस पुनीत।

0: Yeah, Dennis Puneet, mere pyare sunne walo. And it is the legend Vim Damri here on You Are.
1: Oh-ho!
0: Banana. अपनी अपनी पसंद है मेरे प्यारे सिने वालों।

लेजेंड विम डमरी मेरे प्यारे सुनने वालों, और एक और लेजेंड की ओर आपको ले चलेंगे। प्रदीप पहलाज सिंह अब भी हमारे बीच नहीं रहा ये प्रदीप जी, लेकिन इनकी गाने खूबसूरत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुकेश का एक नगमा इनके मुखाने पेश करता हूँ। हीरो यू आर

प्रदीप पहलाज सिंह मेरे प्यारे से नाम मेरे तुन मालख फॉर्मेसी द इंडियन ऑर्केस्ट्रा और बहुत सारे खूबसूरत गाने इनकी गाया हुआ या सैम प्रख्तक और खास करके मुकेश के कुछ गाने जो मुझे काफी पसंद है और मैंने या नटफलेर हैपिक से खदराइट आज मेरी नजर में ये गीत आए हैं तो हमने सोचा क्यों ना प्रदीप का ये नगमा आप तक पेश करूं। मेरे प्यारे सुनो ये उजाला रेडियो है लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनराम से जो पेश हो रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। मैं हूं आपका यारो कया रतनराम दुलारे पांडे और मैं देखता हूं बहुत नहीं लेकिन कुछ लोगों ने ऐप किए हैं 0303639900 पर। तो जैसा भी हो मेरे प्यारे सुनो प्रोग्राम तो हम सजाएंगे जरूर रात्रि में 12 बजे तक और जितने लोग भी ऐप किए हैं और ऐप करेंगे 8 बजे के बाद अभी इश्तिहारे होंगे 8 बजे तो उन इश्तिहारों के बाद हमेशा की तरह लोगों के लिए जो ऐप किए हैं ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए उन सभी के लिए गीत हम चलाएंगे। En wil je dat ook? Geen titels doorgeven? App dan naar de studio 020-363-0808 en geef aan ki apigo chalta git mangte hai. Ja, je wil een rustige nummer? Dat mag wel. Doe jane toch. Shikar kumar, pishkar tahu, sewa mein. Nili nili aankhein.

किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुन लो, उमर वागी तुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुन लो। एक आखिरी गीत पेश करेंगे इस घंटे का, उसके बाद 8 बजे की ब्रेक। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर मिलेंगे। एंड मेरे प्यारे सुन लो, लगातार आप ऐप कर सकते हैं 0 3 9 3 9 9 9 पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, डन मुझे ऐप 0 3 9 9 9 9। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

कल कतवा न जाओ मोरे रानी। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुन लो, अनिल पराग की आवाज, उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुन लो। एंड इट इज बाइना 12 मिनट ओवर द क्लॉक फन 8:12 ऑलमोस्ट व्यतीत हो चुके हैं मेरे प्यारे सुन लो। फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को, रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाबर्स है। वीकेंड है तो भरपूर आप एंजॉय करें मेरे प्यारे सुन लो अपना वीकेंड और अपना फेवरेट रेडियो उजाला रेडियो। प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर चल रहे हैं एंड हैव बीन सो फ्यू मेंस यार अल्स खरीक बारन वे ना, मगर दैट मेक नहीं आउट। मुझे मालूम है मोय वेयर है, हर तरह के फेस है इधर उधर, और फुटबॉल भी है, लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। एंड दैट मुझे फुराल ब्लाइफ दुन ब्लाइफ खनीत फन इट लाइफ। लेकिन जो लोग चून किए हुए हैं मेरा ये प्रोग्राम कम नहीं होंगे और प्रोग्रामों के हिसाब से हम नेट सो मोय मांग चाहे लोग ऐप करेंगे या नहीं तू जाने दो। अम्सदम सेंट्रम में प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं प्रभाजी प्रभा, थैंक यू वेल फॉर योर एपियस ऑलवेज गेसेलिग बेन यू ऑफ द ऐप, और हरदम आप चून किए करते हैं उजाला रेडियो पर। और जहां तक मेरा ख्याल है शायद 24 घंटे 7 दिन लगातार, क्योंकि आप काम करते हैं, जागते हो सोते हो तो उजाला रेडियो फुल ऑन है। तो उसके लिए दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रभाजी। एक गीत सुधीर सेवडत जी का गाया हुआ एक नगमा, कुमार सानू का एक नगमा, इन्होंने अपने ही रंग और ढंग में फिर से गाए हैं सजाए हैं, प्रभाजी के नाम करता हूँ। आइट अम्सदम सिंड्रोम

सुधीर सेवदत्त मेरे प्यारे सुनने वालों, शीशे से बनी एक लड़की और इन्होंने अपने ही रंग और ढंग में गीत को सजाए हैं, बनाए हैं, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किए हैं। या मेरे प्यारे सुनने वालों, इफ फुटबॉल न्यूज 38-0 कनाडा मारोको निकलीस तो फालख एगो फ्लायर पास भैल है हमारी नजर में, ऐसे स्वीफ भैल है हमारी आंखी के सामने धतरो और तोप खरूप और मंफोर विल तनी में नतुलक कल रात जो बहुत नौया कल रात आज सुबह के जो वेस्ट्राइट भैल नतुलक तो से अर्जेंटीनिया एन एन काप फेर्डिया नो काप फेर्डिया हीफ एक फरस बहुत खूबसूरत गेम उन्होंने किया है और बहुत हिम्मत और बहुत ही प्यार के साथ लोगों ने फुटबॉल की है, बहुत कश के साथ अर्जेंटीना ये गेम को जीता है। एन एच एस अलमाल खबर लोस इस खान है द सो का नोक ब्लाइव फ्रेंडशिपलक मादर वॉज फ्लायर इस मेरे सामने कहा दैट इट मींस मुत खान ओब्रूप ओम हुन मेरा बेलकार तक ओम ओम साम द वेस्ट्राइ तक कहे एन ओम बपाल दस या गसिख बदेकिंग एन फ्यूर रेडक टॉयस चला दैट फिन इक ओक अ गुए इनिशिएटिव एरलिक इज एरलिक क्योंकि वारम सौद वदा ताला माल खान दुन ना तो खनीते बहुत मोई मोई वेस्ट्राइड हो रहे हैं और किसी को जीतना है किसी को हारना है हम सभी जानते हैं तिसखीफ है नेम डू ये बेस्ट एंड अल्स इट नीट गेलुक्ट इज नो या दन हैव यू इन ईदर फॉल ये बेस्ट गेदान मा गा गेन गेवेल्ड रेलन इज अ बिट जोन ना मोई एंड सुक इट ओक नी ओप forceer niet en blijf vooral van de dienstverleners, blijf van ze af. Ga geen dingen doen wat niet mag, toch? Laten we het leven mooi houden, begin bij jezelf. Doe je net toch? मेरे प्यारे से नॉलो, मैं देखता हूँ कि हमारे लिस्ट पर जो नाम लिखा है वो एक आदमी है रोटरडम शहर का, जॉनी कालीचरण जी भैया हमेशा भी चून की ये करते हैं, ऐप करते हैं एंड उसके लिए दिल की गहराइयों से जॉनी जी आपको हम धन्यवाद कहेंगे। वांचलात मैं नीट अल्टाइट इन द स्टेक अल्टाइट बैंक आप ऑनलाइन है चून की ये करते हैं और ऐप करते हैं उसके लिए डंकी वेल। एक गीत निजाम वागी टू सैन अ हॉट वन एक ओल्ड इज गोल्ड मेटली मैं आपके नाम करता हूँ। Enjoy your weekend and thank you well for your appearance.

Nizam Waqid Hussain, मेरे प्यारे सुनो, मैं द फॉर्मेसी द टाइगर्स सेवा में नगमा हमने पेश जो किया है, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और हम आपको ले चलेंगे अगले गीत के ओर जो हम आइलिन जी के नाम करेंगे। आइलिन जी टंकी वाली इधर के आप चून किए करते हैं, आइलिन ने शायद हार्लेम, और जब भी मौका मिलता है आइलिन को तो वो ऐप करते हैं, साथ देते हैं। दिल की गहराइयों से आइलिन जी को हम कहेंगे धन्यवाद, डंकी वेल फॉर टफ स्टेम एंड खनीत फान द लोकल्स। एक नगमा हमने तैयार करके रखा है आइलिन के नाम, करता हूँ आइट हार्लेम।

जब कोई बात बिगड़ जाए और जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ब्यूटीफुल सॉन्ग फिर से जो सजाया गया है, गाया गया है, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है, लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रोहतराम से सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। और ja, het is 9 minuten over de klok van 8:30. Sere 8:09 guzar chuke hain. Aifi Jahangir, jo saalon se saath de rahe hain, uske liye shukriya, dil se aapko shukriya ada kehta hoon. Aifi Jahangir ji, aitam sadam. Aifi ji hamesha support karte hain. En daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Ki itni saalon tak log hamesha jab bhi main program banata hu tune kiye karte hain. Main bhi bahut hi prem aur pyar ke saath studio mein hamesha aata hu. Program mein koshish karta hu khoobsurat se khoobsurat nagmaye lane ka aur aap tak pesh karne ka. Lekin baat ye hai ki apne apne sabhi ka पसंद है, तो जिस तरह से हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं, वो तो बहुत ही प्यार के साथ कर रहा हूं और आप इतनी प्यार भी बरसा रहे हैं। याद दूत उन्स सीकर आलो उम्र पर स्वान यू आर दूत खुद। आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, प्यार नहीं देंगे, dan zijn wij ook niks. We doen het allemaal voor jullie. Dankjewel, Ivy. Ik heb het hem net te herkeren gekregen. Ivy Jahangir, naam uit Amsterdam.

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, मोये जैसी ब्लूज कवर हमने आप तक पेश किया है हियर ऑन यू आर। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, दनाह की ओर हम आपको ले चलेंगे, जहां पर मिक रहते हैं और मिक दंकीवेल अल्टाइट अभी सपोर्ट करते हैं। जब भी आपको मौका मिलता है, आप विदेश भी जाते हैं तो उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं। Want je app me ook in het buitenland? Vanuit het buitenland app je ook. Dus dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mika ji, ik mashup humne taiyar karke rakha hai. En dat is van de freestyle uit Suriname. Satyam Matadin ki te gaeng. Mika ke naam karta hoon uit Den Haag.

रंजय मेरे प्यारे से रंजय मेरे फरमान से तंजा 13 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिने वालों, वो भी 9 बजकर। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर पेश हो रहे हैं विद ब्यूटीफुल लोकल्स। एपर्स के नाम हम गीत करते हैं मेरे प्यारे सिने वालों, आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत करूं। दन मुझे अपना 0303639 0303639 जो लोग ये कश उठाएंगे उन सभी के नाम से गीत हम जरूर से जरूर चलाएंगे। एने के बकरी पर अतमारो को खवोन है मत 03 फन हार्ट तक फेलिसिटेट। एन एक होर इन रात हीर है रोतनाम, आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन एक होर ये राव हेल फिल खतुतर दिस इज एन सिंगल ब्लाइ एम आई स्पील ओ खुद है dus waarschijnlijk zeer verdiend. Ik heb het niet gezien. En ik ben niet iemand om voetbal terug te kijken. Hem kan niet voetbal terug naar Takila. Jab ho gaya to ho gaya. Toe jane toch. Ria Kaluji uit Amsterdam. Dankjewel, heb je liye. Ria ji is ook iemand die geniet van het leven. En jab hi mauka milta hai Ria ji ko, to Ria ji pram chun kiye karte hai. En app karte hai. En we hebben heel veel gelachen, Ria ji. En dankjewel, Aapke Epkeli. Geniet van je zaterdag. Geniet van je weekend. Oh, Ria ji ke naam. Ek geet humne tayar karke rakha hai. Pesh karne ja raha hun. Ik zie dat het Sanjay Yodha is. Sanjay Yodha geet gaenge Ria Kaluji ke naam.

कसम की कसम है कसम से, और हमको प्यार है सिर्फ तुम ही से। अब ये प्यार ना हो कम मेरे दिल से। संजय योढ़ा की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं, और बहुत ही प्रेम के साथ आप सभी की सेवा में हमने प्रोग्राम में ये गीत को पेश किया है। रिमेम्बर दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते www.puntujala.nl। और इस प्रोग्राम के दौरान अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए गीत मैं चलाऊं, दान मुझे अपना 0303 3 0 0 0। मेरे प्यारे सुनो, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। सत्यम माटादिन फनफरमासी सूरीनाम का जो फॉर्मेशन है फ्री स्टाइल, इनका एक मैशअप पेश करने जा रहा हूं, और इसे हम नाम करेंगे अल्फनंदरैन में जो रहते हैं कमला के नाम। दंकीवाल कमला जी, आप के ऐप के लिए साथ देने के लिए ऑफ द साथ रखा हूं। जब भी आपको मौका मिलता है आप साथ देते हैं, अब द साथ रखावन दंग की वेल दार फोर। आपके लिए ये गीत सत्यम माता दिन की आवाज में कमला जी के नाम अहित अल्फन।

beautiful mashup mere pyare sunne walo Satyam Mata Din ji ki awaaz ki pyar diwana jab koi baat bigad jaye aur kya kya gaaye the ki dil kya kare aur hasrate hain bahut magar moye itne sare nagmaaye ek geet mein metan hirlak beat aur kaaliye mazale enjoy your weekend mere pyare sunne walo चार मिनट गुजर चुके हैं सर ये 9:00 आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये एन या धीरे धीरे सी एक की ये सूरज जो है अभी डूबा नहीं लेकिन इसे डुबाया गया है अमदा तर ही नो वेर बॉलकिंग कुम एंड दार्डोर इस सो न्यू इवन चेस वेख मदद मांगनी आयत कल एक नया दिन है तो ये सूरज अपना शक्ल जरूर से जरूर फिर दिखाएंगे मेरे प्यारे सुनो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड एक नेट हूं मेरा सूर करेग एंड दैट इज अफान हुई दिख लमकुआ जो ब्रम्बिया है लांग ब्राम्बी एंड दार सित ओक बीच Peper in, natuurlijk en dat zijn lekker zuur. Or mazare, or kia kahun, kafi mazare. Ja, Marokko heeft gewonnen en dat weten we hier, Studio Kebaher. Abhi tak bahut sare tutors hoe hai, sab pagara bhi dagawe hai. Dat lijkt wel oud en nieuw. Maar ik snap wel, ze mogen blij zijn. Zolang het vreedzaam blijft met de Pianis en Wallo, dan is het natuurlijk oké, toch? En waarschijnlijk verdiend 3-0. Ja, het is een goed team. Met heel veel passie en liefde spelen ze. En allemaal Europese spelers. En ze doen het goed. Why not? मेरे प्यारे सुनो लो अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और हेरवाल्डो और मार्गरेट जी के नाम हम करेंगे जो स्वाग में तो रहते हैं लेकिन इस वक्त उत्रेख्त में है बैड क्लाइन केंद्र मिशा और काया ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor मार्गरेट जी हेरवाल्डो जी neem me niet kwalijk मिशा और काया केया भी हो सके तो Heerlijk genieten van de kleinkinderen. En van jullie weekend. Kinderen, kleinkinderen, toch hem nog een keer jo hai dhadkan dil ka. Unke bina ye zindagi kaise chalega. Enjoy, enjoy. Ek geet humne taiyar karke rakha hai. Het is wel een dance nummer, volgens mij hoor. Van Shekhar Kumar. De heer Waldo aur Margaret ji ke liye. Aur ja, jarenlang... आप पार्टिसिपेट करते हैं साथ दे रहे हैं बहुत बहुत बहुत बहुत दिल के गहराइयों से डंक वेल उसके लिए

शेखर कुमार, मेरे प्यारे सुनने वालों, शेखर कुमार की आवाज और ये था ढोबिया का नगमा। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और ये गीत जो है सत्या के नाम हम करेंगे। सत्या जी अत आमसदम भी चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, मजा ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। तो ये है सागर मालिक, मेरे प्यारे सुनने वालों, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंडर में। इनकी आवाज में गीत अलका याग्निक का पेश करता हूं, हियर फॉर सत्या।

जी सके। One of the finest singers हमारे होलैंड के अंडर में मेरे प्यारे सुनने वालों, none other than सागर मालिक जी, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और what a wonderful stem, yeah, रोंगटे सारे खड़े हो गए हैं। और क्योंकि ये गीत अलका याग्निक का one of my favorite song में भी गिना जाता है, अलका याग्निक जी ने क्या डा से ये गीत गाए हैं, और नतीजा इधर उधर उदित नारायण ने भी साथ दिए हैं। और सागर मालिक अगर इस तरह से ये गीत गाएंगे, याद रखाएं मखोना फूर अच्छी अच्छी आवाजों में गीत गाया जाए तो कुछ और बात है। मेरे प्यारे सुनोलो, एक आखिरी गीत पेश करने जाएंगे इस घंटे का, और इस गीत के बाद 10 बजे के ब्रेक की ओर हम बढ़ चलेंगे, एंड नेचुरली एक हम आपका साथ देंगे भरपूर, और वो भी 12 बजे तक। आखिरी घंटे में दैट इज फ्रॉम 11 टू 12, तो उस घंटे में खाव अली मरुस्त खुनी मरसर आए दमिंस दैट इज द बडूलिंग। आप अभी तक ऐप कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत के लिए हाय हेलो कहने के लिए 020-363-0800, geen titels doorgeven, बस आप ऐप करें और आप मुझसे ये कहें कि वेल een rustig nummer of een snelle nummer, en vergeet je naam niet, और आप कहां से ऐप करते हैं। Boy oh boy, ik hoor die tutors buiten, बहुत कसके। आशाराम प्रसाद जी, गीत आपके नाम करता हूं, और बेहद खुशी है हम कि आप ही चुन किए हुए हैं। एंजॉय यू आर, और आशा जी एतम सदम ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनालो उमर वागित सैन की आवाज। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाए, डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनालो, ओरिजिनल रफी साहब जी का एक नगमा फ्रॉम द ब्यूटीफुल मूवी लैला मजनू। होरम में भी प्रोग्राम सुन रहे हैं चांदरा जी और शौकत जी। थैंक यू लिवेल चांदरा जी और शौकत जी आइट होरन नीट आइट होरन माफ होरन हाँ यूली सैन फन होरन। थैंक यू लिवेल एंजॉय योर वीकेंड। और मैंने एक गीत को तैयार करके रखा है और ये नगमा हम आप दोनों के नाम करेंगे, चांदरा जी और शौकत के नाम पेश करता हूँ।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिने वालों, एंड इट वाज सुजल और मैक्सियल डिनी। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो एक मिनट बाकी है मेरे प्यारे सिने वालों, सरे 10 बजने में, एक मिनट 4 o'clock फन हाल्फ एल्फ। एंद्रू जी और चित्रा जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं मार्सब्रुक में, तो थैंक यू वेल, एंजॉय योर वीकेंड। एंड या एक वेद स्टंट एंड एक हॉर्न गेलुइड, ik heb de ramen hier dicht moeten doen, want het is nu echt zwaar. Overdreven geluid buiten. Bumblebee लोग डाकने लगे हैं, जना है जैसे और न्यू है जिस या न्यू में राम देख कन एक बेहतर प्रोग्राम। एंद्रू जी और चित्रा जी और मार्सब्रुक, थैंक यू वेल आपके सपोर्ट के लिए, आपके ऐप के लिए, और एंजॉय योर वीकेंड। मैंने एक गीत को तैयार करके रखा है, द लेजेंड नदीम खान लाइफ अपना, और ये गीत आप दोनों के नाम करता हूँ।

प्रिंसेस राज मेरे प्यारे सुनने वालों, और प्रिंसेस राज के नाम हम खूबसूरत गीत नाम करेंगे। दिस इज फन फार्मेसी अच्छी नाम और गुड वाइब्स मिस्टर प्रे और क्वाकी, कभी अलविदा ना कहना।

लेजेंड नदीम खान की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, हियर ऑन यू आर जो हमने पेश किया है। 8 मिनट गुजर चुके हैं सरे 10 बजकर और आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। प्रणाम से जुड़े हुए हैं रत्न।

कभी अलविदा ना कहना डफरमासी गुड वाइब्स मेरे प्यारे सुन वालों मिस्टर प्रे और क्वाइकी की आवाजें धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 बजे की ब्रेक की ओर मेरे प्यारे सुन वालों और बाहर तो एकदम सनाता अतिस डोंकर खबर अतिस सुहार बोलक लगता है कि बारिश होने वाले हैं भी वखानत सीन वखानत मेरक वखानत फुलर 11 बजे के बाद मेरे प्यारे सुन वालों सेवा में सिर्फ या रुस्तख नुमर खामद राय आप अभी तक ऐप कर सकते हैं 020-363-0008 यू आर क्यू स्टूडियो का व्हाट्सएप है सुशीला चंद्रिका सिंह जी एट अमसल फेम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपके नाम गीत एक हमने जो सेलेक्ट किए हैं द लेजेंड शहीद वागित हुसैन और इंदिरा रामचरण की आवाजें खनित फनी वीकेंड एंड एंजॉय दिस सॉन्ग एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर

पहले जिन शहीद वागित हुसैन और इंदिरा रामचरण की आवाजें। एंड दिस इज सत्यम माता दीन। मेरे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं ब्रेक के उस पार। कुछ नामें और है हमारे लिस्ट पर, उन सभी के लिए गीत हम चलाएंगे ब्रेक के उस पार। तू जाने दो। Remember, this is UR, मेरे प्यारे सुनने वालों, Saturday Night Fever।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अदाएं तेरी। रिमेंबर दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, 11:12 व्यतीत हो चुके हैं और आप सभी चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर सैटरडे नाइट फीवर पेश हो रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे मैं हूं और आपको मालूम रहे कि हम आखिरी घंटे में मान पड़े हैं और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। मैं देखता हूँ 5-6 नाम और भी मेरे लिस्ट पर है, उन सभी के लिए गीत हम चलाएंगे जरूर से जरूर। जैसे कि लक्ष्मण जी अत स्क्रीवनिंग डंकीवेल आपके ऐप के लिए, लक्ष्मण जी एंजॉय आपका वीकेंड और उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर आप भरपूर एंजॉय करें। लक्ष्मी जी तो हमारे दिल में है और संजय ओढ़ा का गाया हुआ ये नगमा लक्ष्मण जी करता हूँ आपके नाम।

एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी तो नहीं, तेरी मेरी कहानी है। संजय ओठा की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत, पॉपुलर सॉन्ग इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं, सेवा में हमने जो प्रेम और प्यार के साथ पेश किए हैं। अब की बार सागर मालिक, जैसे हम हमेशा कहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में, इनकी मुखाने एक नगमा हमारे प्रिय किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये फिर से सजाए हैं, गाए हैं। और ये नगमा हम करेंगे स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी के लिए, अर्ज सुतमीर एंड विवेक स्वाग शिव मखार मोरखा। एंजॉय यू आर एंड एंजॉय दिस सॉन्ग, स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह अर्ज सुतमीर।

मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन मेरा भी किसी के मिलन के। अनामिका तू भी तड़से, सागर मालिक जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अनामिका, फन किशोर कुमार इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं। मैं प्यासा और तुम सावन, अगले गीत का बोल द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन गीत गाएंगे। और एकदम दूर यहां से जहां शायद वेका हो रहे हैं और टेक्सस में भी, डेलस में भी हुआ है वेस्ट राइड ओकफान द ओरायंस नीदरलैंड, टेक्सस से एप आए हैं अजय और सुनीता जी जो वहां रहते हैं, उनकी हिती प्रेमियों के साथ, परिवार के साथ हमेशा उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं। और जब भी मौका मिलता है नतीस बैन अलकवेक है सही स्टैंड बाय, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू लिवेल अजय सुनीता एंड इधर इंदार, आप सभी के सपोर्ट के लिए कि इतनी दूर होकर भी रेडियो स्टेशन और आप चून किए हुए उजाला रेडियो पर, थैंक यू लिवेल। ये नगमा जो है उमर वागित हुसैन का गाया हुआ, आप सभी के नाम दार इन टेक्सस इन अमेरिका।

मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन होना। खूबसूरत गीत द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन इनका गाया हुआ ओरिजिनल नटुलक फन किशोर कुमार और लता जी का नगमा फिल्म फरार का एक नगमा है। This is you are, मेरे प्यारे सुनने वालों 2 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 11:30 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम के एंड की ओर। 5 घंटे लगातार आप सभी की सेवा हमने की है और भरपूर भी आप सभी ने ऐप किए हैं, तो आपके नाम गीत चला रहे हैं। अगले गीत मेरे प्यारे सिनेमा लो शेखर कुमार की आवाज में हम आप तक पेश करेंगे। और आपको मालूम रहे मेरे प्यारे सिनेमा लो, आज मैं हूं और आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे आने वाले बुधवार वुंसडाग आख जुली, जबकि हम प्रोग्राम पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6 से 9 बजे और आने वाले बृहस्पतिवार गुरुवार को दोनराख नीख जुली रात्रि में 8 बजे से 11 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर भी मेरा साथ आप देंगे। अगले गीत जैसे मैंने कहा मफराव एंड मनेर बिहारी जी के लिए अजबरीरा और एक नगमा जो शेखर कुमार गाएंगे। मफराव एंड मनेर बिहारी जी को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा चून किए करते हैं जब भी प्रोग्राम बनाता हूँ, ये दोनों हमेशा ऐप करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये नगमा आपके नाम वहाँ बरेरा में और जितने लोग भी आप लोगों के साथ सुन रहे हैं उन सभी के नाम।

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सनम शेखर कुमार का गाया हुआ ये नगमा आप तक हमने पेश किया है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड दैट इज नॉन अदर भैया राजेश सिंह के लिए आउट रोटरडम, और राजेश सिंह चून किए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम के साथ, काफी मजा ले रहे हैं। तो डंकी वेल, बेहद खुशी है हम कि आप एंजॉय कर रहे हैं, और हाँ बहुत ही जल्द मिलेंगे शायद कल भी। एंजॉय राजेश सिंह जी, ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका बस होता ही रहता है। कैसे कहूं मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सिनोलो सेवा में हीर ऑन यू आर हमने जो पेश किया है। अगले गीत की ओर मैं आपको ले चलेंगे, किरण किरार का नया नगमा, एकदम फर्स्ट फंड पेयर्स किरण किरार। और ये नगमा हम नाम करेंगे अलमेर में जो रहते हैं और इस वक्त चून किए हुए हैं, टिचा जी तिथिया दंकीवेल, चून करने के लिए, एप करने के लिए। और एंजॉय दिस सॉन्ग जो आपके नाम हम करते हैं, टिचा जी के नाम अलमेर, किरण किरार अजनबी।

अजनबी, कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है? सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। किरण किराड़ का लिटिल सॉन्ग आप तक हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। हमारी लिस्ट पर इस वक्त और कोई नाम नहीं है और कोई नाम भी हम जोड़ेंगे भी नहीं। अब दो नगमाए और आखिरी आप सभी की सेवा में पेश करने जा रहा हूं। इन दोनों नगमाओं के बाद हम यहाँ स्टूडियो रतनाम से रुखसत होंगे। आपको मालूम रहे कि आप सभी से फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते बुधवार वुंसाख एंड ऑन द डाक रात्रि में वुंसाख को पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर 6 बजे से रात्रि में 9 बजे तक। आप सभी को तो मालूम है और डोंडराख 9 जुलाई को पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज रात्रि में 8 बजे से 11 बजे 3 घंटे। फिलहाल तो ये नगमा पेश करता हूं जिसका टाइटल है हुस्न ब्यूटीफुल।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालों, ये हुस्न का ये नगमा प्रस्तुत फ्लेवर हमने आप तक पेश किया है। जैसे मैंने कहा, मेरी लिस्ट पर और कोई नाम नहीं है और कोई नाम आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया है मेरे प्यारे सुनो वालों आखिरी की चलाने का। जिस तरह से आज हमने भी ये प्रोग्राम सैतरी नाइटी फर को सजाए हैं, बनाए हैं, यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी ने सुनते वक्त भी बेहद भी पसंद किए हैं, नगमाओं के साथ काफी मजा ली है, लुफ उठाए हैं, आनंद प्राप्त किए हैं। एंड नैचुरली जितने लोग भी ऐप किए हैं उन सभी ने तो एंजॉय किए हैं, ऐप के जरिए मुझे बताए हैं, और ऐप करने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेल, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनोला, आखिरी गीत जो हम पेश करने जाएंगे, इव स्पीकर इज नॉन अदर देन द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन। और इनके गीत चलाने से पहले फिर एक बार आपको हम इतला दें कि आने वाले मुंसाख एंड दोनदाख बुधवार और गुरुवार को आपका सेवा फिर करने चले आएंगे। मुंसाख मैथ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, वो भी 6 बजे से रात्रि में 9 बजे तक, 3 घंटे, और दोनदाख फनाफ 8 इन द आवंट टू 11 विद अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: दिस इज उजाला रेडियो।
3: हाय जूडी, आर यू ट्राइंग दिस? इट्स वेरी नाइस, हैव मोर। हाय शर्मा, आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
4: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
3: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

इस देश का बचपन भूलता हूँ। फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर। मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।